0: शरारी
1: कुर्ते पजामे शेरवानिया पंजाबियों का अपना सब तो वड्डा प्रीमियम क्लोथिंग ब्रांड फैशन आईक्यू फैशन आईक्यू लेटेस्ट डिजाइन ट्रेंडिंग आउटफिट्स
0: लेडीज सूट लहंगे गरारे शरारे
1: कुर्ते पजामे शेरवानिया कोट पैंट ब्लेजर अते किड्स फैशन
0: विंटेज ते सफारी लगेज सेट्स दी वड्डी कलेक्शन थीम वेडिंग ले टॉप टेलर टीम भी अवेलेबल फैशन आईक्यू फैशन आईक्यू हुणे कॉल करो 9054533225 या गूगल ते सर्च करो फैशन आईक्यू स्पेशल गिफ्ट ले रेडियो उड़ान दा रेफरेंस देना ना भूलियो
2: सच कहे जे हुंदा
3: चुल्ले ते पकदी रोटी सच है
4: मिट्टी चुगदी फसल सच है
3: गुरु दी पाणी सच है सतगुर प्यारे सच्चे दी बाह फड़दे हुंदे ने।

सतगुरु होए दयाल तो सरदा पूरी है, सतगुरु होए दयाल नकब हूँ झूरी है, सतगुरु होए दयाल तो दुख ना जानी है, सतगुरु होए दयाल तो हर रंग माणी है। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों माणते हुए जुड़ चुके जी एक बार फिर एक खूबसूरत शाम, खूबसूरत शाम खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम रेडियो उड़ान, जिंदगी जिंदाबाद ते चढ़दी कला की पहचान रेडियो उड़ान प्रभ संधु दे नाल।

0: what is the reason?
1: This is the effect of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo fettis, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी कस्टडी किस नु मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहेंगे
4: S&S Lawyers को इन सारे सवालों के जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है अपने हक जानने लई या सलाह लेने लई आज ही S&S Lawyers नु कॉल करो 416-655-2000
5: जे तुसी भी करना चाहुने हो अपना खुद दा रेडियो प्रोग्राम ता आज ही सानू कॉल करो 647-504-1557 टेक स्पिरिट हजे तक भी तुसी अगर अपने सिक्योरिटी कैमरे नहीं लगवाए ता बिजनेस या रेजिडेंशियल अपने घर लई सिक्योरिटी कैमरे रिकॉर्डिंग अते दुनिया भर दे विच किते भी कैमरे चेक करो अपने फोन दे राही टेक स्पिरिट 905-621-4100 तुसी होम ऑटोमेशन कोई भी करवानी है तुसी अगर करे अपना होम थिएटर होम सिनेमा तैयार करोना वेरी प्रोफेशनल टीम टेक स्पिरिट 905-621-4100 905-621-4100 ते फोन जरूर करो
6: ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੁਣੋਗੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਹੋਸਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਰਨਲਿਸਟ ਰਮੇਸ਼ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕੋਗੇ
5: ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 647-504-1557 ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਤੇ

0: अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ जरूर आएं। वेज थाली, चना भटूरा, अमृतसरी कुलचे का स्वाद बाय वन गेट वन ऑफर के साथ जरूर उठाएं। फ्रॉम 10 AM टू 8 PM सिंपली इंडियन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट सर्विंग यू फ्रॉम 3 लोकेशन 15 Fender Way 85 Montpellier Street 275 गार्डन ब्रूक ट्रेल इन ब्रैम्पटन।
1: क्या बात है, जरूर पहुंचो ते तुसी सिंपल इंडियन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट तो वधिया टॉप दिन डीलां लो। रॉयल ऑटो सेंटर दे साडे मिस्टर राज बाई जी हाजिर ने। ऊबर या लिफ्ट दी सेफ्टी इंस्पेक्शन करवानी है, गड्डी दी इंजन ट्रांसमिशन दा ई टू जेड कोई भी पंगा पिया तां याद रखो वन एंड ओनली इको एक राज बाई जी रॉयल ऑटो सेंटर स्टील्स एंड मेलनी। नंबर है 9057991478 9057991478 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਓਕੇ ਸੋ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬਾਈ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ ਸੀਗੀ ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਸੁਣਦੇ ਆ।

0: सर्वपरे प्रभु अंतर्यामी नानक
1: ब्रैंटन में अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज स्पेशल देखने के लिए चाहिए आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-455-5 पर कॉल कीजिए 9054562733 अल्फा ऑप्टिकल योर विजन इज योर बिजनेस
0: खेद कर है अरे बहुत संताप है आयो शरण तुहारे कर हार अनेक पापी चोट नहीं एक बात सुनता की होता कर कृपा है संती मंत्र दियो मोहि निर्भव दुर्गा सब कमाया जी ने संता की पैज रखदा आया आद बिरद रच पाला हर अमृत नाम भोजन नित पुंज हो सर्व बेला मुख पाव हो जरा मरा ताप सपना तो गुण गोविंद नित गाव हो सुनी अरदास स्वामी मेरे सर्व कला बने आई प्रगट पई सगले जुगे अंतर गुरु नानक की वडियाई सोरत माला पंजवा सुख मंगल कल्याण सहज तुम प्रभु के चरण निहारिया राखन हारे राखियो बारिक सतगुर ताप उतारिया उबरे सतगुर की शरण आई जाति सेव न बिरती जाई रहा कर मह सुख बाहर पुण सुखा प्रभु अपने भय दयाला।

0: सबना से प्रभ अपने कृपा दारी आज पहल जाना हमारी अच्छियों तू सुख संपत राम ले हो पाई मेरे को प्रभ आ गए अरदान
1: जो भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है कि नहीं
2: नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा माझा मालवा द्वापा वेडिंग स्टोर
3: यहाँ से आपको ठाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा 30 मेलिनी ड्राइव यूनिट 9 एंड 10 ब्रैम्पटन टेलीफोन 905-799-9400
2: माझा मालवा द्वापा वेडिंग स्टोर
0: आनंद विनोद मंगल गुणगावो गुरु नानक भय दयाला जय जयकार भय जग पितर।

आप सभी श्रोताओं घर में बहुत प्यार अभिनंदन है। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साई राम या अली मदद। ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया मौसम है, आप एंजॉय कीजिएगा। और मदर्स डे है, आप सभी माताओं को मदर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। जो पहली बारी माएं बनी है उनको भी बहुत सारी मदर्स डे की शुभकामनाएं। और अब आपके लिए हम प्रोग्राम लेके पेश हुए हैं, तो आपके लिए बढ़िया बढ़िया गीत सुनाएंगे, मनोरंजन करेंगे आपका। मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। तो अगर आपने अपनी मदर के लिए बढ़िया सा टीवी लेना है, फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर, आपको किसी तरह का भी कोई भी सामान चाहिए तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी आपके लिए ग्वाल्फ में है। तो आप फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर, टीवी, जहाँ सोफा घर में, जहाँ बाहर आउटडोर बारबेक्यू सोफा लेके देना चाहते हो अपनी माम को, तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाकर उनकी स्पेशल देखिए, फिर अपने ऑर्डर बुक कीजिए 905-709-0045-799-0055 आपके लिए नंबर है। तो अगर आपने सोने के गहने खरीदने हैं, सोने की बार्स खरीदनी है, या फिर आपने छोटे छोटे आपके लिए प्रेजेंट चाहिए मदर्स डे के लिए, तो आप अल मदीना ज्वेलर्स पे चाहिए। अल मदीना ज्वेलर्स आपके लिए मॉल्टन में एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है। तो और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर सकते हैं 905-673-0100। उनके पास डिजिटल गहने हैं और ब्राइडल सेट्स हैं। अभी शादियों का सीजन पूरे जोर पे है, तो आपको शादियों के लिए गिफ्ट चाहिए, जहाँ फिर आपने मदर्स डे के लिए गिफ्ट खरीदना है, डायमंड्स आप टू 70% ऑफ मिलेंगे। तो अल मदीना ज्वेलर्स आप सभी को उनकी पूरी टीम मदर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। तो और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर लो 905-673-0100 पर आप अल मदीना ज्वेलर्स को कॉल कर सकते हैं। और अगर आपने अपनी ट्रक रिपेयर करवानी है तो आप बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर सेंटर पे जाइएगा, तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया सर्विस देंगे। और जानकारी के लिए 905-625-0055 पर कॉल कीजिए।

0: ਸਮੋਸਾ ਐਂਡ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ $4.75 ਪਰ ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ। ਬੇਸਣ ਪਿਸਤਾ ਰਸਗੁੱਲੇ ਫੋਰ ਜਸਟ $5 ਪਰ ਪਾਉਂਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਸਟਮਰਸ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਸੇਲ 2026 100% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੇਡ ਟਾਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਵੀਟਸ ਹੁਣ 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ 2 ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 1850 ਅਰਜੁਨ ਰੋਡ ਈਟੋਬੀਕੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-1613-1165।
1: मदर्स डे के लिए अगर आप सभी भाई बहन इकट्ठे हो रहे हो, आपको खाना ऑर्डर करना है, बढ़िया खाना आपको मिलेगा क्योंकि उनके जो टर्नओवर है बहुत है, तो इसलिए आपको खाना जो होगा बढ़िया मिलेगा। तो आप समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री पे जरूर जाइएगा, तो वहाँ पे आपको उनकी पूरी टीम आपको मदर्स डे की बहुत सारी शुभकामना है स्काई डोम ऑटो की तरफ से भी। और फिर आपको अपने अगर किसी किस्म की भी आपको प्रॉपर्टी किचन वाटर गोल्फ में बेचनी है, खरीदनी है, तो आप कॉल कर सकते हो। जी हाँ, नसीब सेंट को कॉल कीजिए 519-546-1254-6-1260 पे आप उनको कॉल कर सकते हो। तो आइए अब आपको एक बढ़िया सा गीत सुनाते हैं और तो उसी की उसी में से आपको ये बढ़िया सा गीत सुनाती हूँ। लेट्स गो टू दिस वेरी क्लासिक माया फिल्म का देवानंद लता जी का गाया हुआ गीत है रफी साहब के साथ।

नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल तुमसे। नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल झुके तेरी खुले, जहाँ जुल्फ रहूं उसी मंदिर तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है। तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की मैं

besamos de ti. Me enamoré de que por tu noche me destino de hacerte de ti. जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहा है और गाने भी जो मैं चुन रही हूँ वो आपको पसंद आ रहे होंगे। तो आइए अब आपको मदर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। पंजाबी का गाना है, बहुत ही बढ़िया। तो आपको वो गाना सुनाती हूँ पंजाबी का। सो Let's go to this beautiful song. तो पहले आपको बता दें, अगर आपने तो पहले आपने ऐसे करियो आप कि आपने अगर जी हाँ, तो अगर आपने अभी तक अपना टैक्स नहीं भरा है तो अपना टैक्स जरूर भरिएगा। ये जो टैक्स है आपके लिए बहुत बढ़िया, आपका भर के देंगे। HST फाइल करनी है, पर्सनल हो जाए बिजनेस, तो आप कॉल कीजिए गुरप्रीत रोडे को 416-302-8135 पे। आप गुरप्रीत रोडे को कॉल कर सकते हो। तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। आप सभी को एक बार फिर से मदर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। जो पहली बारी मदर्स बने हैं उनको भी बहुत सारी बधाई। तो सुनिए ये गीत।

जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर से सार हूँ। आपकी होस्ट मीरा। अब अपने आप सोने के गहने, सोने की बार, जहाँ आप छोटे छोटे सेट खरीदना चाहते हो, डिजिटल गहने खरीदना चाहते हो, तो आप अल मदीना ज्वेलर्स पे जाइए। अल मदीना ज्वेलर्स आपके लिए मॉन्ट्रियल में एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, और उनकी स्पेशल्स का फायदा उठाइए। मदर्स डे स्पेशल्स, आपको डायमंड अप टू 70% ऑफ मिलेंगे, और ब्राइडल गहने चाहिए आपको, आप जाइए अल मदीना ज्वेलर्स को। और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कीजिए 905-673-0100। आपको अपनी माम के लिए बढ़िया टीवी लेके देना है, लेटेस्ट फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर, किसी तरह के भी आउटडोर फर्नीचर, बारबेक्यूज, घर के अंदर फर्नीचर, वन ऑफ ए काइंड, बढ़िया प्राइस, बढ़िया क्वालिटी, तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाएं। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है। और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर लीजिए। दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्थ में 905-799-0045, 9057-99-0045। अब समर आ गई है, तो बहुत सारे लोग घर घर की नए नए घर खरीद रहे हैं और उनको मूविंग करना है, तो अगर आपको एचके मूवर्स को कॉल कीजिए। बहुत बढ़िया उनकी टीम्स हैं, बढ़िया प्राइसेस हैं, बढ़िया तरीके से आपके सामान को मूव करते हैं, तो आप आज ही उनको बुक कर लीजिए। उनका ट्रक 416-524-4004, 416-524-6704 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। एचके मूवर्स पूरे कनाडा भर में आपको मूव करने में मदद करते हैं, एचके मूवर्स। आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार।

जी हाँ, वाकई ही जिंदगी अनारकली फिल्म 1953 में जब बनी थी तो उसी साल में मेरा भी जन्म हुआ था। तो देखो आज वही गाने में जो उस जमाने में बने थे, तो उन्हीं को मैं अभी आपको सुना रही हूँ। देखो क्या बात है ना, टाइम टाइम की बात है, जिसे कहते हैं कि टाइम इज अ बिग थिंग। वक्त वक्त जो है ना, अगर वक्त कम इस्तेमाल करते, या कभी वक्त कम ऐसा आता है जब उसका फायदा हम नहीं उठाते, है कभी बहुत खुशियां होती हैं जिंदगी में और फिर कई बारी बहुत गम आ जाते हैं जिंदगी में। तो बस ये जो वक्त है ना, ये हमें रुलाता है, हंसाता है, हमारे साथ बहुत सारी गेम्स जैसे होती हैं, लेकिन ये है कि हमें इसके लिए अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, सोचना है कि कैसा वक्त है, उसको सेंस करना है। जैसे कि कई हम इकट्ठे होते हैं तो उसका भी वक्त होता है, तो देखना होता है कैसा टाइम है, किस तरह के लोग हैं, कैसा वातावरण है, उसी के मुताबिक हमको अपना जो सोच है, जो अपना बर्ताव है, वो करना होता है। अगर अगर उसके मुताबिक हम नहीं करते तो जिंदगी में फिर सफर करते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि वक्त वक्त जैसे कि उम्र का हिसाब है, वो भी वक्त है कि अभी जब हम इतनी उम्र के हो जाएं और फिर उसका उसमें लोगों का अच्छा सोचे ना, अच्छा बर्ताव ना करें उनके साथ, हमेशा उनका खिल्ली उड़ाएं, मजाक करें, तो नीचा दिखाएं, तो ये सारी चीजें एक वैसे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हवा में उड़ जाती है। अगर आप किसी को नीचा दिखाते हो, ऊपर हवा में उड़ जाता है। दूसरी बात यह है कि सामने वाले बंदे के दिमाग में आपका जो लाइफस्टाइल है उसका छाप छोड़ जाता है, और आपका स्टैंडर्ड क्या है उसका छाप छोड़ जाता है। अगर कोई किसी का ऐसे खिल्ली उड़ाने वाला उड़ाता है, किसी न किसी तरीके से नीचा दिखाता है, तो उसका अपना वो अपने आप का ही दिखाता है कि वो जिंदगी में कहाँ तक उसकी सोच है। जो सामने वाला बंदा होता है वो तो एक दो पल के लिए वहां पे है उसके सामने, फिर चला जाएगा, लेकिन जिंदगी भर उसके दिमाग में ये चीज एक खटकने लगेगी। जब भी वो उस बंदे को देखेगा तो उसके बारे में जान जाएगा, नेक्स्ट टाइम वो उसके सामने जाने से जाएगा जरूर। ऐसे छोड़ तो नहीं सकते जिंदगी में किसी को भी, लेकिन यह है कि उसके साथ थोड़ा केयरफुल होने लग जाएंगे, और फिर किसी ना किसी तरीके से उनको बोलना जरूर चाहिए। मैं कहती हूँ कि अगर कोई ऐसा नीचा दिखाने वाले की एक बंदे की आदत होती है ना, वो सभी को नीचा दिखाता है, उसका उसके लिए एक मजाक होता है, लेकिन सामने वाले को हर्ट होता है, तो उसको ये फीलिंग उसकी उसको मालूम नहीं है कि किसी का फीलिंग मैं हर्ट कर रहा हूँ। अगर किसी की फीलिंग, अगर आपकी फीलिंग हर्ट कोई कर रहा है इस तरीके से, आपको जरूर किसी ना किसी तरीके से उसको ये संदेश मैसेज जरूर देना चाहिए कि भाई मैंने तो आपके साथ बात ही की तो आपने मुझे नीचा दिखाया और मुझे हर्ट किया। क्या होता है कि कई बारी जिंदगी में आप बहुत कुछ अचीव कर लेते हो और तो उसकी वजह से अभी लोगों को ये चीज खटकने लगती है, तो फिर वो तरीके ढूंढते रहते हैं कि किसी न किसी तरीके से आपको नीचा दिखाएं, जहां आप भला बुरा कह सकें। तो क्या होता है कि कोई किस्मत तो छीन नहीं सकता, जो आपकी अचीवमेंट आपकी है वो कोई छीन नहीं सकता है, तो इसलिए ऐसे लोग जो होते हैं उनका खुद का अपना कोई ऐसे वजूद नहीं होता है, तो दूसरों को वो इस तरह की बर्ताव करते हैं, तो नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी को दो पल के लिए मिले हैं तो उनके साथ अच्छा, इतना अच्छा बर्ताव करें कि उनके मन में एक छाप सी रह जाए कि भाई मैं उस बंदे को मिला तो कितना अच्छा था, मेरे को भी बहुत सारे मिले थे। देखो एक 2-3 साल पहले ब्रैम्पटन में समर टाइम का फेस्टिवल, अभी भी वो जैसे ही वापस आने वाला है, वो ब्रैम्पटन में होने वाला है, वहां पे डाउनटाउन में प्रोग्राम, तो कल्चरल प्रोग्राम, तो उसमें आने वाला है, इंग्लैंड से जस्सी आया था, तो मेरे को और भी सिंगर्स वहां पे आए थे 2-3 साल पहले, तो वो भी मुझे मिले सभी लड़के, पर जस्सी मुझे इतने प्यार से उसने जप्पी डाली,
कि वो जो जब भी उसने जिस तरीके से मुझे डाली, मुझे सारी जिंदगी याद रहेगी। इतना लविंग केयरिंग तरीके से उस लड़के ने मुझे जब भी डाली कि मुझे, वो जस्सी का सिंगर है, तो इतना प्यार से उसने मेरे को किया कि मेरे को सारी जिंदगी याद रहेगा कि हाँ उसने मुझे जब भी डाला था। तो ये होता है एक्सप्रेशन, क्या कुछ सेकंड के लिए मैं उसको मिली हूँ तो उसको मैं हर रोज जैसे कि मुझे वो याद आता रहता है, इस तरह की। या आपको शाप छोड़नी चाहिए, तो वो तो मेरे से बहुत दूर, हजारों मील दूर है, और फिर हम लोग इतना मिलते भी नहीं है, तो फिर कभी पता नहीं कब मिलेंगे। तो लेकिन ये है कि उस एक जप्पी ने मेरे मन में उसकी छाप छोड़ दी। तो इसी इस चीज की मैं बात कर रही हूँ कि आइए अब आपको एक और बढ़िया सा गीत सुनाती हूँ। अगर आपने अपना टैक्स अभी तक नहीं भरा है तो आप अपना टैक्स भरने के लिए गुरप्रीत रोटे को कॉल कर लीजिए। और अब अगर टोरंटो आसपास के इलाके में आप घर खरीदना बेचना चाहते हो तो आप कॉल कर सकते हो। जी हाँ, आप कॉल कर लीजिएगा खुशवंत बैंस को 816-673-1313-4167713-13। और आपको फिर घर खरीद के मूव भी होना होता है तो एचको मूवर्स को कॉल कीजिएगा 416-524-8004। बहुत बढ़िया तरीके से आपके सामान को मूव करते हैं और उनकी टीम्स हैं, प्रोफेशनल हैं, और पूरे कनाडा भर में आपको मूव करने में मदद करते हैं। आइए सुनिए ये प्यारा सा गीत।

है, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। जो लता जी और मुकेश जी का गाया हुआ गीत है मदारी फिल्म 1959 में आई थी। लेकिन अगर आपके इसके कॉस्ट्यूम जैसे पहले पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट वाली मूवीज हैं उनमें बहुत सारी मूवीज में वेस्टर्न आपको टच मिलता है, बहुत सारी ड्रेसेस उन्होंने पहनी होती हैं परफॉर्मर्स ने, सिंगर्स ने। तो आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार। आइए अब आपको ये गीत सुनाती हूँ। अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है, मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सुआदा भला।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स

जाके घर सब किश है भाई, नौ निद भरे भंडार, तिसकी कीमत ना पवै भाई, ऊंचा अगम अपार। जी अजंत प्रतपाल दा भाई, नित नित करदा सार, सतगुर पूरा भेटिया भाई, शब्द मिलावन हार, सच्चे चरण सरेविया भाई, भ्रम भउ होवै नास, मिल संत सबा मन मांझिया भाई, हर कै नाम निवास, मिटै अंधेरा अज्ञानता भाई, कमल होवै प्रगास, गुर बचनी सुखी उपजै भाई,

0: कस्टमर्स नो ते उना दे रिव्यूज या व्यूज अक्सर ए होंदे ने।
1: हेलो जी, मेरा नाम है गुरप्रीत कौर। मैं तवा किचन तो कैटरिंग करवाई सी, सच मनो स्वाद ही आ गया। गरम

0: 51832000 पे कॉल कर टेक्स्ट कर देना,
1: 51832000।
0: हाँ मैं आपको सारा लिख दूंगा। और दूसरा बोलूं, नजारा पे जरूर जाना, आप अपना स्पेशल बूथ बुक करवाओ, अपने हस्बैंड को कष्ट दो, अपने को बच्चों की मदर हूं मैं, मेरा बर्थडे है, स्पेशली आपको एक बूथ मिलेगा अगर आप बुकिंग करवा लोगे
2: जी।
0: उसमें आप 2 घंटे बैठ के आराम से खाना खा सकते हो
2: जी,
0: और बेल लगी होती है, बेल सर्विस बेल।
2: सो आपको किसी आपने की तरफ देखना नहीं,
0: देखना नहीं अपने किसी की तरफ, अपने सर्विस बेल बजानी है, टेबल के ऊपर राइट वे सर्विस वाले पहुंच जाते हैं कि जी आपको क्या चाहिए। ठीक है, एक बूथ बना होता है जिसमें शैंडलर लगे हुए हैं
2: जी,
0: उस बूथ में आप 8 से 10 लोग बैठ जाते हैं
2: जी,
0: प्राइवेट जैसे इंडिया का नहीं, मैं इंडिया गया था मंजू,
1: ओके,
0: मैंने वहां पे देखा कि हम लोग जहां भी जाते थे हम प्राइवेट रूम ले लेते थे, अपना प्राइवेट एरिया ले लेते थे, हम हॉल में नहीं बैठते थे। ठीक है, मजे से बैठते थे, कभी बोलते थे ये लेके दो वो लाके दो, आराम से खाते पीते थे, और क्या अच्छा है आपका ये है वो, टाइमिंग अब तक याद है, खाना नहीं याद, मेरे को टाइमिंग याद है जैसे हमने स्पेंड की थी
2: जी।
0: आप नजारा पे जरूर पहुंचना कल और परसों, आज और कल सॉरी। ठीक है,
2: और अमन जी कल मदर्स डे आ, सो सारे मदर्स नो मैं भेणा नो सारे नो कहांगी आप दी किचन च उठ के लिख दो टुडे द किचन इज क्लोज्ड, ते सारे पहुंचो नजारा ते, ते बहुत वधिया वधिया डील्स हैगे, मैं कॉल कीती सी नजारा ते।
0: ठीक है, 905-452-2600 होर कोई सुन रहा सानू घूमण बारे कोई गल जगह दसनी चाहुंदी होवे, आप खुद दसना चाहुंदा होवे, मैं दस सकदा, तुसी मैनूं लंडन तक पुछ लो, इधर नूं सार्निया दे बॉर्डर तक पुछ लो, नैगरा फॉल दी जगह पुछ लो, कल्ले फॉल ते ना जाया करो नैगरा फॉल च, होर मैं 15-16 जगह दस दूंगा तुहानूं, झरना देख के मुड़ने हो, अगर ईस्ट दे विच हैगे हो तुसी बेलविल वल नूं जा रहे हो तां मैनूं पुछ लो। ठीक है, अगर किंगस्टन तक जाना, अगर तुसी नॉर्थ दे विच जाना हैगा, नॉर्थ दे विच मैं तुहानूं सारियां जगह दस दूंगा, भी इत्थे चल जाओ, इन्ना इन्ना टाइम इत्थे इत्थे स्पेंड करियो। स्टूडियो नंबर 905-673-3337, दीक्षा मेरे नाल फ्रॉम तवा किचन, दीक्षा जी कैसे हैं?
3: हाँ जी जी बढ़िया बढ़िया, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग दीक्षा, आज तवा किचन दे उत्ते तुसी टेक आउट दे उत्ते स्पेशल चल, सब तो स्पेशल रेस्टोरेंट है इस एरिए दा, बिजीएस्ट रेस्टोरेंट तवा, TAWA किचन
2: जी,
0: आओ चक्कू ते ले जाओ।
2: सो
0: तवा किचन दा कॉन्सेप्ट है, तवा किचन दी दो लोकेशन ने, एक वेस्ट एंड एक ईस्ट एंड, एक नॉर्थ यॉर्क च जिथे मंजू जा रही है। सो नॉर्थ यॉर्क दे विच वेस्टर्न एंड फ्रेंच, कैनेडी एंड स्टील, माउंटेनिश एंड बुवेड, एयरपोर्ट एंड बुवेड। सो आंटी नाल गल करते हैं, जिहड़े कि परौंठे वगैरह सारे बनाउंदे, उहनां दे इंचार्ज है आंटी जी, नूं लिआओ जी इत्थे फिर।
3: हां जी,
0: सो तुसीं
3: आंटी जी तुहानूं दस्सणगे अज दीआं डीलां दा, जो भी अज डील लगी हुई है साडे तवा किचन ते परौंठियां ते, आंटी तो पुछो, आंटी दस्सणगे तुहानूं।
0: हां जी, आंटी परौंठे वाली असीं बनाए हुए आ
2: जी,
0: एक नाम रखे आंटी परौंठे वाली,
2: बिल्कुल परौंठे वाली आंटी।
0: सो परौंठे वाली आंटी नाल साडे, परौंठे वाली आंटी सत श्री अकाल जी। पनीर दा पकौड़ा
2: जी,
0: एक ओदा पल्ला, मैं टोरंटो च गारंटी करदा तुसी इन्हां दा पनीर दा पकौड़ा खाना राइट वे बनाउंदे ने,
2: मैं ट्राई कीता बहुत ही ज्यादा
0: राइट वे स्पेशल हरी चटनी। आंटी दसो जी किवें बनदा ते सारा समझाओ ते
3: नॉर्मल पकौड़ा होगा जिन्हां ने खादा उन्हां लई गुड है, जिन्हां ने नहीं खादा जरूर ट्राई करके देखियो, वो चटनियां नूं स्पेशल पनीर नूं चीरा दे के भर के, और फिर जिहड़े असीं अपने बेसन दे विच जिहड़े ने सारियां चीजां पा के मसाले वगैरा ते ओ जिहड़ा पकौड़ा जिहड़ा फ्रैश बनाया जांदा, बिल्कुल असीं जरूर लैंदे आ 20-25 मिंट दा टाइम, पर जिहड़ा पकौड़ा जिहड़ा पनीर उस वेले कट के उस वेले ही बना के तुहानूं जिहड़ा है फ्रैश दित्ता जांदा। इसे तरह जिहड़े वेज पकौड़े ने असीं सवेरे आ के हाफ डन करदे आ, उस तों बाद नाल नाल तुहानूं जिहड़े है दे जांदे ने, क्योंकि जिहड़े पकौड़िआं दा समान काफी ज्यादा हुंदा, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਚਾਟਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਟਿੱਕੀ ਚਾਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਹਾਫ ਡਨ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਟਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੇ, ਲੋਕ ਟਿਫਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਚਾਰ ਤੇ ਚਟਣੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤਵਾ ਕਿਚਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੱਚ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਿੰਡਸਰ ਤੱਕ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਮਤਲਬ ਅਚਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਰੇਲੇ ਦਾ ਅਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਬ ਦਾ ਅਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ ਵਧੀਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੇਲ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵੀ 10 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲਵਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੇਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਜੀਰਾ, ਰਾਈ, ਮੇਥੀ, ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ, ਕਲੌਂਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਰਾ, ਜਵੈਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ

0: सुषमा इसका मतलब क्या है, समझ आ गया आपको?
1: समझ आ गया जी, माँ के लिए गाना है कि माँ मावा हो दिया ठंडिया शावा।
0: हाँ
1: ठीक है कि नहीं,
0: गिल्ली था ते आप है पेंदी पौंदी सुखी छाओ दुनिया वाले, तो सर मतलब किया?
1: सर बाउंसर मार दिया आपने मेरे सर के।
0: अभी पूछ लेते हैं भाई, कोई शिवानंद सो जड़ी लाइन सी संतोष
2: जी, या
0: ये पहला दिया मदर से नाल जुड़ी सी, अजकल नहीं है
2: जी,
0: बच्चिया ना दुख माना सेंदी है ना
2: जी,
0: गिल्ली था ती आप है पेंदी
2: जी,
0: पौंदी सुखी था वो दुनिया वाले हो
2: जी,
0: इरा मतलब दसो शिवानंद भी समझ आ जूगा
2: जी।
0: संतोष जी इंता चलो मैं कानू पुछना फिर इन्होंने बंगाल लाना क्यों भी मुंडा किवें आ?
3: सही गल है, चढ़दी कला जी,
0: चढ़दी कला ना
3: जी।
0: संतोष जी पुछ के पंगा कर लेना, मतलब हुंदा शिवानू बड़ा डूंगा मतलब है, बहुत डूंगा डीप
2: जी।
0: जिहड़े साडे लिसनर्स ने दसो भाई शिवानू ने एक बार एदा की मतलब है कि गिल्ली थां ते आप है पैंदी पौंदी सुकी थां ओह दुनिया वाले ओह मां हुंदी है मां ओह दुनिया वाले ओह
2: जी।
0: सो आई हैव सीन ਇਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਚ
2: ਜੀ
3: ਜੀ,
0: ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਮਦਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚ
2: ਬਿਲਕੁਲ,
0: ਤੇ ਆਪਸ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਰਾਤ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। ਸੋ 905-673-33 ਸ਼ਿਵਾਲੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਆਪ ਸੇ ਪੁੱਛਦਾ ਬਾਹਰ ਬਹਿਣੋ, क्या आप पंजाब में हमारी सरकार लाना चाहते हो कि नहीं? हाँ जी 905-673-33 ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਸ਼ਿਵਾਨੂ? ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ
2: ਜੀ,
0: ਤੇ ਬੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣਾ ਸੀ।
2: ਚਲੋ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਰਾਈ।
0: ਹਾਂ 905-673-33-33-7

0: चूहा ते कॉकरोच भी। सुन लो मेरी गल, मैं इस किचन च खाना बनाना ही नहीं।
1: हैं, फिर कॉकरोच ते चूहे? ओ हाले महीना पहला तो ट्रीटमेंट कराई सी।
0: मैं तेरे पहला ही कहा सी, सस्ते दे चक्कर च ना पो। हुण उपर बेसमेंट वाले बेड बग दी कंप्लेंट भी करी जांदे आ।
1: ओ मैं तां कहना घर ही बेच दिंदे आ।
2: आप घर चो बाहर क्यों जाना? चूहे कॉकरोचां नूं कड्डो। टोरंटो पेस्ट अरेस्ट नूं कॉल करो। जिहड़े छोटे तो छोटे घर तो लैके वड्डियां बिल्डिंग्स, रेस्टोरेंट, होटल्स, मोटल्स, नर्सिंग होम्स विच वी काम करते हैं। सस्ते दा दावा तो नहीं पर कम दी गारंटी है। 647-515-8000 टोरंटो पेस्ट अरेस्ट, सिक्के बंद कम दी गारंटी। 647-515-8000।
3: की तुसी अपने खुद दा रेडियो प्रोग्राम नवे साल दे विच

0: पिक्का जंक्शन लेके आए ने स्पेशल ऑफर्स फॉर फेस्टिव सीजन। खास फेस्टिव सीजन लाई कैटरिंग स्टार्ट सिर्फ 9.99
1: जिस विच मिलन गया 8 आइटम्स। ए लाइव कैटरिंग भी कर देने।
0: फंक्शन वड्डा होवे या छोटा, कैटरिंग वाला ता सिरा ला देंगे।
1: एना कोल शानदार पार्टी हॉल भी आ, वो भी रीजनेबल फूड प्राइसेस ते।
0: इस फेस्टिवल सीजन बनाओ अपनिया खुशियां नु दुगना ते पहुंचो टिक्का जंक्शन।
1: कॉल 6474294040
0: जंक्शन, खुशियां दा सेलिब्रेशन।
2: देखो जी, करता है अपना नंबर वन, पर मेरा दिल करता है अपना घर सारे तो सोना हो भी।
3: बस इन्नी गल।

0: ਦੋਸਤੋ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੰਬਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨੀ ਗਲੋਬਲ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਆ, ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਰੂਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਯੂਨੀ ਗਲੋਬਲ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਟੂ ਕਾਲ 437-264-3175 437-264-3175 4372643175 ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ
1: ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।
0: ਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਟਿਲ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖਾਤੇ 'ਚ 40,000 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, 80,000 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਈਜ਼। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਕੌਣ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਦੱਸੋ।
1: ਹਾਂਜੀ, ਲਾਈਕ ਸੋ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਵੋ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਪੀ ਆਰ ਯਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਨ੍ਹੀਂ ਕੇ ਲੀਏ ਯੇ ਹੈ ਜੋ ਸਕੀਮ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ। ਆਪ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਤੇ ਹੈ ਔਰ ਸਾਥ ਮੇਂ ਆਪ ਹਕੂਮਤ ਸੇ ਫੰਡਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਮੇਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਨ ਥਿੰਗ, ਅਗਰ ਆਪਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨਕਮ 2024 ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਪੇ $70,000 ਸੇ ਕਮ ਹੈ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਕੀ ਟੁਗੈਦਰ, ਤੋ ਹੀ ਆਪਕੋ ਇਸਕਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ।
0: ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਫਸਟ ਥਿੰਗ ਫਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਨਮੈਰਿਡ ਨੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਹੈ ਬਟ ਉਨ ਉਨਕੀ ਸਿਰਫ ਫੀਸ ਹੀ ਨਿਕਲਤੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਲੋਨ ਹੀ ਉ
1: से फीस कवर हो जाती है कॉलेज की. okay. अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं, फीस कवर हो जाएगी ग्रांट से. और लेकिन आपको लोन आएगा 15,000-16,000 डॉलर का सिर्फ.
0: okay.
1: वो भी अगर
0: जो कोई सिंगल बंदा स्टडी करना चाहता तो जी ग्रांट आनी ग्रांट आऊ कि फीसा भर सके, फीसा गवर्नमेंट ने भर देनिया ने. एंड जो लोन ऑप्शनल होंगे जो लेने लेना पैदा,
1: वो ऑप्शनल है और ज्यादातर लोग लेते हैं. कोई अगर मना भी करता तो जब दो हफ्ते में फोन आ जाता है, मैं ऑफिस आ जाते हैं, सर वो लोन भी करी दो.
0: ओके, हुण सिनेरियो नंबर 2, जे हस्बैंड वाइफ आ 2024 दी नोट्स ऑफ असेसमेंट दी गलबात करिए, जे वो दोनों जने 30,000 एक कमा रहे हैं, 30,000 एक 60,000 उन्हां दी फैमिली इनकम आ, चाहे दोनों जॉब कर रहे ने पर दोनों दी फैमिली इनकम घट आ, तां अवेलेबल हैगे ने, वो एलिजिबल हैगे ने?
1: बिल्कुल जी, ये अच्छा केस है. इसमें इनको अगर हस्बैंड वाइफ है, सिर्फ किड्स हैं इनके? आपने क्या रखा?
0: नहीं, वो जस्ट मैरिड कपल.
1: हाँ जी, मैरिड कपल है. तो इनको नेट ग्रांट जो है घर लेके जा रहे हैं वो केस बाय केस 10,000-15,000 डॉलर है. और मतलब फीस निकालने के बाद.
0: ओके ओके, ठीक है.
1: हाँ जी.
0: एंड लोन वो कितना का लोन मिल सकता है जी? जेड़ा विदाउट
1: इनको 17,000-18,000 का लोन, मतलब इनको टोटल फंडिंग जो बनेगी वो बनेगी आप मान के चले 30,000 डॉलर अप्रोक्सीमेटली, जो इनके खाते में आ रहा है. मैंने कॉलेज की फीस 11,000 या 15,000, इसके बीच में कॉलेज की फीस चेंज कर दी डिपेंडिंग ऑन कोर्स. मैंने माइनस करके आपको बताया.
0: ते होने जे अगले केस दे विच उन्हां दे एक बच्चा है, की फर्क पूगा?
1: हाँ जी, तो इनकी जो इनको इस केस में हस्बैंड वाइफ में से एक या दोनों पड़े तो उसपे थोड़ा सा फिगर आउट होगा, फंडिंग डिपेंड करेगी, बट अप्रोक्सीमेट फंडिंग इस केस में 45,000-60,000 डॉलर. हाँ जी, अब इसके इसमें ज्यादा फंडिंग आएगी. इसमें जो फंडिंग जो इनके खाते में गिरेगी दैट विल बी फ्रॉम 45,000-60,000 डॉलर.
0: फिर जो दो बच्चे ने तो और बाजूगी जी फंडिंग.
1: दो बच्चे हों फिर तो वो और अच्छा, मतलब मान के चले अप टू 80,000 डॉलर की फंडिंग बन जाती, जिसमें से आधा पैसा ग्रांट, आधा पैसा ऑप्शनल लोन एट 0%.
0: जे मतलब के दोनों पार्टनर चो एक पार्टनर घर दे विच जॉब नहीं कर रहा जां हाउस वाइफ आ जां कोई भी रीजन आ, ते दूसरा पार्टनर है जिहड़ा वो सेल्फ एम्पलॉयड आ, ते वो उन्हां दी इनकम 20,000-30,000 ही है, यानी कि वो ते दो बच्चे ने, फिर वो केस पास
1: है? तो इस केस में दोनों को करना चाहिए. और जैसा मैं बता,
0: अच्छा दोनों अलग अलग भी कर सकते ने
1: जी?
0: दोनों अलग अलग भी कर सकते ने?
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: अच्छा,
1: अगर आपके बच्चे अगर मान के चले एक या दो है तो आपको बेनिफिट है इसका दोनों को करने का. हस्बैंड वाइफ दोनों हस्बैंड वाइफ फुली ऑनलाइन कोर्स करते ने, घर के कम्फर्ट से करते हैं, 2-3 घंटे, नो एग्जामिनेशन, ओनली सिंपल असाइनमेंट्स, बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए, अटेंडेंस आपकी एवरीडे 3 आवर्स ऑनलाइन फोन पे कंप्यूटर पे होनी चाहिए, 75% है ना, तो ये क्राइटेरिया, इसका एज लिमिट कुछ है नहीं, क्रेडिट चेक इसमें गवर्नमेंट आपका कुछ करती नहीं है।
0: सो जी मैं दोबारा समझा कि पहली चीज ये प्रोग्राम सिर्फ जेडे पीआर ने सिटीजन ने उन्हां लई आ, नंबर टू जेडे तुहाडी जे 2024 दे नोट्स ऑफ असेसमेंट ते इनकम 70,000 तो घट आ उन्हां लई आ, तुसी सिंगल हो ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਟੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਗਰਾਂਟ ਉਨੀ ਕੁ ਗਰਾਂਟ ਹੋ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਭਰ ਸਕੇ। ਹਾਂ 15,000-20,000 ਦਾ ਲੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਹੋ ਇਨਕਮ ਘੱਟ ਆ ਮੋਰ ਸੂਟੇਬਲ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੋਰ ਸੂਟੇਬਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕੋਰਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ
1: ਤੇ
0: ਕੋਰਸ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਆ।
1: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕੋਰਸ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕੋਈ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਏਂਗੇ। इसलिए हम आपको डालते ही सिंपल कोर्सेज में है जो फुली ऑनलाइन है, इजी टू पास है। आपका हम एडमिशन आईआईटी में नहीं कराते, सिंपल कॉलेजेस में कराते, पर आराम से पास हो जाएंगे 2-3 घंटे क्लासेस लगा के एवरी डे। ऑन अदर हैंड अगर आपको एचवैक पीएसडब्ल्यू ईसी वाले कोर्सेज करने जो कि फुली ऑनलाइन नहीं है, हमारे पास वो भी कोर्सेज है, गवर्नमेंट फंडेड है, गवर्नमेंट उनकी फीस डायरेक्ट पे करती है कॉलेज को, आपको लिविंग एक्सपेंसेस के लिए सेपरेटली फंडिंग देती है 30,000-100,000 तक। तो इसमें से आधा पैसा क्या है, ग्रांट। जुलाई के बाद रूल चेंज हो रहे हैं, लोन आएगा, ग्रांट नहीं आएगी। अभी एनरोल करें, जैसे गवर्नमेंट बिलियंस ऑफ डॉलर्स डेंटल केयर, रिफ्यूजी हेल्थ केयर, रिफ्यूजी अकोमोडेशन में लगाती है, वैसे गवर्नमेंट एजुकेशन में इन्वेस्ट करती है, कोई कैच नहीं है इसमें। दैट्स इट।
0: तो पैसा भी कितने भी यूज कर सकते हैं?
1: बिल्कुल जी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पैसा आप कहीं भी कैसे भी यूज कर सकते हैं। किसी के लिए है ग्रोसरी करना, कोई बैक होम बेचता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो लोग एनरोल्ड है वो सेकंड थर्ड फोर्थ कोर्स कर रहे हैं, और जो रह गए वो रह ही गए हैं। अब गवर्नमेंट पॉलिसी भी चेंज करने वाली है, लेकिन बहुत लोगों की इसका लाभ पहले ले चुके हैं। बिल्कुल जी, 3 बैच रहे गिनती के, मई बैच पूरा फुल। अगर आप बोले मई में एडमिशन कराओ, नहीं होगा जी, फुल है हमारा बैच। अब जून का बैच है जी।
0: ਸੋ ਯੂਨੀ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਵੈਲੂਏਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
1: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, 5-10 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਵੈਲੂਏਸ਼ਨ, ਔਰ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੈ ਜੀ ਹਮਾਰੀ ਅਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕੀ ਸਰਵਿਸ।
0: ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਚ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ?
1: आप मान के चले आपको जिस दिन बैच स्टार्ट हो रहा है उस दिन के मतलब 1 वीक में आपसे गवर्नमेंट आपका बैंक इन्फॉर्मेशन लेती है जो कि आप खुद अपने घर पे भरते हैं, और उस दिन से 30-90 डेज के बीच में आपके अकाउंट में फंडिंग आराम से आ जाती
0: सिद्धा है। तुहाडे कोल नहीं आऊगी सीधा, जेड़ा बंदा अप्लाई करो ओदे खाते च जाओ ते तुहाडी फीस।
1: हमारी फीस काम होने के बाद आपके जब अकाउंट में फंडिंग हो जाती है, आपने अपनी ईमानदारी से हमारी फीस देनी है जो कि रेंज करती है 199-499 तक।
0: ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।
1: ਠੀਕ ਹੈ।

धड़कते दिलों और सुनते कानों को दानिश बुखारी की तरफ से मोहब्बत भरा सलाम। आप सभी के दिलों पर मौसीकी की दस्तक देकर थोड़ा सा मदहोशी के आलम में ले जाने के लिए शेर व शायरी से लबरेज चंद गजलों का एक मुख्तलिफ सिलसिला लेकर हाजिर हूँ, जिसे आपकी मोहब्बत ने नाम दिया है कहकशां। दिल से जब दिल की बात होती है तब मुकम्मल हयात होती है। आंखें खोलें तो दिन निकल आए, बंद करें तो रात होती है। जिसकी आंखों में ख्वाब होते हैं उसकी ही कायनात होती है। एक मुकम्मल मुख्तसर जुबान है जब आंखों आंखों में बात होती है। बात नजरों की चली तो फिर दूर तलक जाती है, क्योंकि इनकी भी एक मुख्तलिफ जुबान होती है। बशर्त है इन्हें पढ़ने और सुनने वाला समझने वाला होना चाहिए। तो पेशे खिदमत है एक खूबसूरत गजल जिसे आवाज दी है गुलाम अली ने।

दिल गुमसुम जुबां खामोश क्यों है, ये आंखें आज फिर नम क्यों है। जब तुझे कभी भी पाया ही नहीं है तो फिर आज खोने का गम क्यों है। माहौल गुमसुम हो तो इंसान भी उस माहौल में गुमसुम सा हो जाता है, मगर उस वक्त चाहने वालों को अगर किसी का इंतजार होता है तो बस किसी अपने का। अब आपकी नजर पुरसोज पुरनूर दिलकश आवाज जगजीत सिंह की।

प्यार करना सिखा दीजिए, मुझको मुझसे मिला दीजिए, दर्द दिल का जरा कम तो हो, कोई ऐसी भी दवा दीजिए, रह के खामोश मेरे ऐ सनम, यूं ना सजा दीजिए, मेरी तिश्नगी को मोहब्बत का समंदर बना दीजिए। समीन रंगों की इस महफिल में कुछ रंग बेरंग भी हो जाते हैं, तो आइए कुछ ऐसे ही अंदाज में गाई हुई एक खूबसूरत गजल आपकी नजर करना चाहता हूं, जिसे अपने दिलकश आवाज के साथ नवाजा है लता मंगेशकर।